0: नेपाल निर्माणको आधार निरन्तर सुन्दै रहनुहोस् सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 मेगाहर्ज।
1: यति बेला मध्याह्नको 12 बजे।

तुमै बेस पठाजु बेस पठा के मै सुन्न चाड्यौ तू कहो तुमै बेस पठाजु बेस पठा के मै सुन्न चाड्यौ।

0: जाए ना मुंह की जाए।
1: वो है तो बरसात के समय है, बुखार के आना खुले है कि मुंह आए तो अब मुंह गरत सतगो आ सकते है।
0: हाँ तो सभी याद हो गया, घर के आस पास झाल झुनिया बढ़ के बहुत बड़ा हो गया है, काटे कहा।
1: हाँ ऐसा करा जाए तब काल सवेरे पूरी तरकारी नाश्ता करा जाए और सब परिवार मिलकर साफ सफाई करेंगे लोग और आस पास के खोर व्यवस्थापन करेंगे भी है।
0: ऐसे समय पर तो बरबार घास पूरा गंदगी रहा जगह पर सांप लुकाई के बैठा हो सकते हैं ना।
1: वही से तो कही था द्वितिया से मीरा जतवा विवेक त्योहरेश्वर और हम मिलकर घर के आसपास का बरबार घास काट दिया जाए, काट लाए जावा जलावन घरे से कुछ दूर व्यवस्थापन कर दिया जाए, गहरी के आना सांप मुंह न हले के मुंह से मरम्मत कर दिया जाए और घर के आसपास खाली और साफ होने के बाद सांप आवे के अपने कम हो जाए न।
0: हाँ काल संचरों हो सवेरे सब फुर्सते में हो जाते हैं।
2: सांप बरसात के समय में सूखा जगह पर रहना पसंद करते हैं। यह मौसम में अपने बास स्थान पर पानी चल जाना पे सूखा जगह के खोज में वो लोग बाहर निकलते हैं।
0: मूस मुर्गी देश सारा कई खोजी कार्यक्रम में सांप मानव बस्ती मेरे आए सकत है।
2: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करें और नक्सेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कैसे पता लगाए आधिकारिक वेबसाइट snake22nepal.org में जाके आवश्यक जानकारी ले सका जाते हैं।
0: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडेमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै डीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्रका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
3: यो युनाइटेड हस्पिटल यही होइन र भएको कहाँनिर साह्रै छ र

0: जरूरी सूचना।
1: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग को विशेष मौसम बुलेटिन अनुसार 2083 साल असोज 9 गते देखि 11 गते सम्म लुम्बिनी प्रदेश का विभिन्न स्थान में हावाहुरी मेघगर्जन तथा चट्टान सहित भारी देखि धेरै भारी वर्षा होने संभावना रहेको छ। इस अवधि में बाढ़ी पहिरो डुबान तथा अन्य दुर्घटना घटना हुन सक्ने जोखिम रहेकाले सम्पूर्ण प्रदेशवासीलाई विशेष सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिन्छ।

0: धातु रसायन केमिकल न मिसाइने शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य स्थिति चितवनको अत्याधुनिक मिलमा उत्पादित शुद्ध तोरी स्वास्थ्य स्थिति
1: Reliable Agro Nepal Public Limited का प्रीमियम उत्पादन है।

पैसा खाओ पैसा लाओ पैसा कहीं पूरा कर पैसा खाओ पैसा लाओ पैसा कहीं पूरा कर पैसा खाओ पैसा लाओ पैसा कहीं पूरा

स्फटिक सदृशं कुंडलोदुभाषिवक्त्रं दिव्याकल्पैर्नौ मणिमये किंकिनी नूपुराद्रे दीप्ताकाशं विशदवशनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताभ्याभ्यां बटुकमनिशं शूलखड्गं दधानं हस्ताम्बुजयुगस्तकुम्भयुगलात् उद्धृत्य तोयं शिरः सिञ्चन्तं करयोर्युगेन दधतं स्वाङ्के शकुम्भौ करौ अक्षस्रग्मृगहस्तमम्बुजगतम् मूर्धस्तचन्द्रं सवत् पीयूषोन्नतनुं भजेश गिरिजम् मृत्युञ्जयं त्र्यम्बकम् जगद्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय।